0: 时光宝盒，漫游经典，音乐之光，我是金丹。每周日十点，香港电台普通话台，让我们在旋律里重逢往昔。
1: 一个个在港尼泊尔女性的故事，
2: 我们的女儿2.0。
3: हाम्रो समाजको हर छोरीहरूमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरूको अनेकौं आभासहरू समेटिएको एउटा मिठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू Our Daughters 2.0。
4: 更多尼泊尔女性嘅在港生活故事，欢迎收听 CIBS 节目《我们的女儿 2.0》。
1: 立刻上港台网站收听节目直播或重温。
5: 香港电台 CIBS 人人广播。
6: 安仔。考完试，长假期有什么打算？
7: 找份兼职做，见见世面，也挣点零用钱。
6: 找工作也得考虑工作性质和环境。去年就有同学因做暑期工受伤，我们没有受过正式训练，危险的工作绝对不适合我们。
7: 为了一份一两个月的工作，终身抱憾，可真不值啊！
6: 对呀，有问题可以打劳工处热线2559-2297问个明白。
8: Listen, 宇宙有多大，音乐就有多大。周六下午3点，AM621，夜雨